सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 20 जून 2026 शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ।

सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 23 जून 2026 मंगलवार, ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष नवमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:28 पर।

अंत तो हो जाना है, लेकिन ये नहीं जानता कि अनंत के आगे बेअंत है। अंत होने से पहले बेअंत को जान लो तो फिर अगले वाले अंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

डेस्कटॉप पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्ता से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरणी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं और रेशों में भी लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हो गई है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपकी पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि भाष से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बह जानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्नर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं, जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताएं जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

पर सुहाना लगता है। मत होश हवा मत वाली फिजा, संसार सुहाना लगता है। कर लेना किसी से प्यार कहीं दिल अपना।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: अरे तो

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, रेडियो वित्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते। सुनते रहो अपने

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरणी और आप सुन रहे हैं किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है माँ बाप जिंदगी के असली हीरो। एक ऐसा शो जो हमारे माँ बाप की अहमियत, उनके बलिदान और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के तरीकों पर रोशनी डालेगा। अगर आज हम यहाँ हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनका हर दिन का दिया हुआ बलिदान। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं के बारे में।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रोजू पने पसंदीद बर्थ।
4: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत, कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
5: आज का जो ललवाक है ये बड़ा ही विचित्र ललवाक है, इसमें आपको साइंस भी दिखेगा। मैं इस ललवाक की बात आपको बताता हूँ। लल कहती है, बान गोलते प्रकाश आव जुंगे, चंद्र गोलते मुती सेथ, सेथ गोलते कहते ना पुने, गई भूर वह सुहा मेजरित कहते। इस वाक में आपको सुनाई देगा कि बान गोलते प्रकाश आव जुंगे, यानी सन जब डूब जाता है, जब खत्म हो जाता है, जब डिसॉल्व हो जाता है, तो चंद्रमा निकल के आता है, मून चमकना शुरू कर देता है। और जब वही मून डिसअपियर हो जाता है तो जो कॉन्शियसनेस की लाइट है वो निखर के सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस भी डिसॉल्व हो जाता है तो बचता क्या है? बचता वो शून्य है, बचती वो एम्प्टीनेस है। और उस एम्प्टीनेस में ये भूर वो अस्वह तीनों जो कॉस्मिक प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों उस एम्प्टीनेस में, उस शून्य में खत्म हो जाते हैं। अगर आप आज साइंस भी देखेंगे तो न्यूरोसाइंस हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन का एक आउटकम है, लेकिन जो लल कहती है उसके कहने के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रेन का आउटकम नहीं है, बल्कि ब्रेन कॉन्शियसनेस का ही एक आउटकम है, ब्रेन रिसीवर है, ब्रेन रिफ्लेक्टर है उस कॉन्शियसनेस का। जैसे चंद्रमा जो है वो बिना सूर्य की लाइट के चमक नहीं सकता, वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो बिना उस अवेयरनेस के फंक्शन नहीं कर सकती। यानी जैसे जैसे अवेयरनेस अपना विस्तार करती है, जैसे जैसे चित्त का विस्तार होता है, उस चित्त के विस्तार के साथ साथ ही मैं उस नीचे के प्लेन से ऊपर के प्लेन की ओर मुड़ना शुरू हो जाता हूँ। और एक समय ऐसा आता है जब मुझे फिजिकल लाइट, जब मुझे फिजिकल अवेयरनेस से परे हट के मुझे उस कॉन्शियस अवेयरनेस, उस कॉस्मिक अवेयरनेस की ओर लेके जाता है, और उस कॉस्मिक अवेयरनेस से भी जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं एक अल्टीमेट शून्य में पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा अगर सूर्य की लाइट खत्म हो जाए तो चंद्रमा की लाइट से हम देखते हैं, अगर चंद्रमा की लाइट अंधकार हो जाए तो हम मन की आंखों से देखते हैं, लेकिन जब मन की आंखें भी चली जाएं तो फिर वहां शून्य ही बचता है। उस अंधकार में बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو متستا هم سفر زندگی هند.
1: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में. दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में. स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत. प्राउड टू बी एन इंडियन.
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनिए और सुनाइए, रेडियो हिंदुस्तान सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो हिंदुस्तान 90.0 FM पर। हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हिंदुस्तान, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने। रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, पर मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह, मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह।

कोई अब इन रास्तों से गुजरता क्यों नहीं? सफर तवील होने के बावजूद तुम नजरों से ओझल होते गए और दूर इन सहराओं में आंधियां थी, गर्द गुबार के जजीरों के सिवा कुछ नहीं नजर आया। फिर भी उम्मीद बंधी रही, शायद एक परछाई लिपट जाए मुख्तसर सी जिंदगी के साथ, सिर्फ एक बात करके।

तुम आसमानों में रहते हो, इसीलिए शायद मेरी आरज़ूओं से खेलते हो, मेरी मासूमियत पर मुस्कुराते हो। क़यामत तक साथ निभाएंगे और हमारे तुम्हारे इन रिश्तों को मजबूत डोर से बांधेंगे। इन्हीं आसमानों में जा बसेंगे, बनाएंगे अपना आशियाना, पर यह हो न सका। खुद तो निकल गए और हमें यहां छोड़ आए इन तन्हा हवाओं के संग।

आसमानों में जा बसी हो, तितलियों के संग हवाओं में तैरती हो, परिंदों की उड़ान नाप लेते हो, सितारों को छू लेते हो। मोहब्बत बांटते हो और इन तैरते बादलों में गुम हो जाते हो। चुपचाप इशारों ही इशारों में समझाते हो, रूहानियत का फलसफा बयां करते हो और इन फिजाओं को अपने आंचल में ढक लेते हो।

धाराओं से गुजरकर इन रास्तों पे तुम मेरा एहसास हो। ख्वाहिशों की परवाज लिए बुलंदियों को छूना एक ख्वाब की तरह दिल में पलता रहा। काश हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोहसारों के उस पार ले जाते जहां मोहब्बतें रवा दवा है, जहां खुशबू है प्यार की और बदलते हैं मौसम।

0: पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाड़े का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13। कार्यक्रम आधारित है लखनऊ से त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां पर। सहयोग आरजे किरणी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं वितस्ता गीत माला का एक नया एपिसोड। आज के इस कार्यक्रम में जिस महान लेखक की हम कविताएं गजलें आपके लिए पढ़ेंगे और उसके साथ जुड़े कुछ संगीत भी सुनाएंगे, उनके बारे में कई लेखकों ने अपनी राय इस तरह से दी है। ज्ञानेंद्र साज जी, संपादक जर्जर कश्ती, वो इनके बारे में लिखते हैं, इस गजल संग्रह के बारे में कुछ कहने के लिए बहुत कुछ कहना शेष रह जाएगा। इन्होंने इन गजलों के साथ काफी मेहनत की है, जो हर गजल के हर शेर में साफ स्पष्ट दिख रहा है। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर देखा है, सोचा है और लिखा है। वे आगे लिखते हैं, माँ ही बच्चों की प्रथम गुरु है, उसी से बहुत कुछ ऐसी सीख मिलती है जो मानव जीवन में कदम कदम पर काम आती है। तमाम अंधेरों से उजाला माँ की सीख से प्राप्त होता है। तीरगी में रोशनी का द्वार माँ से ही मिला, सादगी में बंदगी का सार माँ से ही मिला। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी लिखते हैं, गजल अपने महबूब से बातें करने का नाम है, इसलिए गजल में चंद शेर होते हैं और हर शेर अपने आप में भरपूर और मुकम्मल होने के साथ एक दूसरे से जुड़ा होते हैं, लेकिन काफिया और रदीफ इन्हें आपस में बांध के रखता है, जिससे यह तमाम शेर गजल में तब्दील हो जाते हैं। आगे वे इनके बारे में लिखते हैं कि दिल सूफियाना हो गया कि पहली गजल के अशआर देखिए। अशआर यूं है, कितनी बेबस जिंदगी है देखिए तो, दर्द की बहती नदी है देखिए तो, यार के गम से दुखी है आजकल हम, आंख अशकों से भरी है देखिए तो। डॉक्टर शंभुनाथ इनके बारे में लिखते हैं, नारी के गृहिणी रूप का सम्मान करते हुए उसकी विवशता को इन्होंने निम्नवत व्यक्त किया है, उसी के प्यार से ही घर सदा गुलजार होता है, मगर गृहिणी की किस्मत में कहां इतवार होता है। ये शब्द जिस महान लेखक के बारे में लिखे हैं, वो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे गजलों के माध्यम से। वे है लखनऊ से प्रयागराज में जन्मे त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष। त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी लिखते हैं, मैं आभारी हूं वरिष्ठ गजलकार श्री ज्ञानेंद्र साज जी का मुझे सदैव गजल गोई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस कृति की पांडुलिपि का अवगाहन कर उसके प्रति अपने विशेष उद्गार लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए मैं आभारी हूं। वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती मंजू सक्सेना जी का इस कृति की पांडुलिपि को पढ़कर इसे अपनी सुधि शुभाशंसा प्रदान करने के लिए मैं आभारी हूं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी का इस कृति की पांडुलिपि को पढ़कर इसको अपनी मंगल कामना देने के लिए मैं अपना अति विशिष्ट आभार अर्पित करता हूं। त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष। आज हम इस वितस्ता गीतमाला कार्यक्रम एपिसोड 13 में त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां संग्रह से हम कुछ कविताएं और कुंडलियां सुनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। गजलों को सुना नहीं जाता, बल्कि गजलों को महसूस किया जाता है दिल से। हमें आशा है त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी की जो गजलें हैं वो हम आप तक उसी अंदाज से पहुंचाने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने उनको पिरोया है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की, वितस्ता गीतमाला 13। पेश है कुछ गजलें त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह है दिल सूफियाना हो गया से। त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी लिखते हैं,
आंधियों के दौर में भी हौसला रखेंगे हम, मुश्किलों से जूझने का सिलसिला रखेंगे हम, हर बुराई का करेंगे राह में नित सामना, नेक कर्मों से हमेशा वास्ता रखेंगे हम, सज्जनों के रूप को इस लोक में पहचान कर दुर्जनों से जिंदगी भर फासला रखेंगे हम, नफरतों की मार सहते इस नए संसार में ध्यान में इंसानियत का फलसफा रखेंगे हम, दूर करके दिल से सारी उलझनों के भाव को जीत की कायम हमेशा सिलसिला रखेंगे हम, चाहतों की डोर को कसकर बहुत है थामना, दूर जीवन से जहां की वासना रखेंगे हम, रहनुमाओं की सलाहों को जरूरी मानकर दोस्तों की खुद बनाकर तालिका रखेंगे हम, दोस्तों की खुद बनाकर तालिका रखेंगे हम।

त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी लिखते हैं, मंजिलें मिलती नहीं आराम से, जिंदगी की शान अच्छे काम से, तीरगी का खौफ क्यों दिल में रहे, रोशनी हो चाहतों की शाम से, हर घड़ी इंसानियत की बात कर, प्यार हो लोगों को तेरे नाम से, रोक देना काफिले सब जुर्म के, जोड़ लो दिल अमन के पैगाम से, होश में लाए जो दिल बेहोश को, आशिकी हो ऐसे दिलकश जाम से, नौनिहालों के लिए वरदान जो, जोड़ना मन को सदा उस दाम से, फर्ज तेरा है नहीं बस देखना, काम को जोड़ो नए आयाम से, काम को जोड़ो नए आयाम से।

मनीष जी एक और गजल में लिखते हैं, इश्क के जोश में जग बुलाते रहे, आशिकी के करम को निभाते रहे, ख्वाब बुनते रहे प्यार का आशियां, आस के हौसले हम बढ़ाते रहे, वक्त बनता रहा जिंदगी की कजा, चाह के दौर सब रंग लाते रहे, बार बढ़ता रहा दर्दो गम का यहां, बोझ सारा खुशी से उठाते रहे, नाम बाकी सभी भूलते ही गए, आपको नाम लेकर बुलाते रहे, देखकर आंधियां राह बदली नहीं, बेखुदी में खुशी सी मनाते रहे, खौफ देती रहे तीरगी हर कदम, दीप विश्वास के हम जलाते रहे, दीप विश्वास के हम जलाते रहे। एक और गजल में मनीष जी लिखते हैं, देखकर हैरान कितना अब जमाना हो गया, उनका मेरे दिल के अंदर अब ठिकाना हो गया, चाहता हूं साथ उनका लोक में आठों पहर, जिंदगी में इश्क का अच्छा बहाना हो गया, चैन मिलता है सदा उनके हंसी दीदार से, गीत उनके होंठ का मेरा तराना हो गया, दूर रहकर भी सदा ही पास आते हैं नजर, जज्बाए दिल मेरा इतना आशिकाना हो गया, आशिकी के गुल निखरते जा रहे हैं हर तरफ, उनके घर जो अब तो मेरा आना जाना हो गया, देखते ही देखते ये बेखुदी बढ़ती गई, शौक नजरों के लिए मैं ही निशाना हो गया, संग उनके भूल जाता हूं मैं अपनी मुफलिसी, साथ में उनके सफर मेरा सुहाना हो गया, धड़कनों में अब समाई बस सनम की बंदगी, प्यार में उनके मेरा दिल सूफियाना हो गया, प्यार में उनके मेरा दिल सूफियाना हो गया।

0: रेडियो आपके जीवन का प्रवाह।
1: त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी एक और गजल में लिखते हैं, हर घड़ी लगता कि जैसे कि हरारत है मुझे, हो गई शायद जमाने से मोहब्बत है मुझे, देख के नजारे जिंदगी में आजकल, रोज मिलती है नई कोई नसीहत है मुझे, ख्वाब के आगोश में रहना लुभाता है सदा, बोझ सी लगती जमाने की हकीकत है मुझे, इल्म काफी है हर एक शय का जमाने की, मगर लग रहा अब दर्द की काफी जरूरत है मुझे, मौन रहकर मैं निहारूं जब कभी उनको कहीं, सोचते हैं वो कि उनसे कुछ शिकायत है मुझे, देखकर व्यापार में मसरूफ लोगों का चलन, जिंदगी लगती हमेशा बस तिजारत है मुझे, पूछिए मत ये खुदा से वास्ता क्या है भला, जान से प्यारी खुदा की बस इबादत है मुझे, जान से प्यारी खुदा की बस इबादत है मुझे।

मनीष जी एक और गजल में लिखते हैं, तुम्हारे प्यार के दम पर नई दुनिया बसाई है, मुझे तुझ में नजर आती सदा सारी खुदाई है, रहे जो पास तू मेरे सभी कुछ भूल जाता मैं, सही जाती नहीं मुझसे सनम तेरी जुदाई है, बड़ी मीठी जुबां तेरी उड़ाती होश है मेरा, खुदा के पास भी कोई नहीं इसकी दवाई है, कभी सपनों में आकर के छटा दिलकश दिखा देना, तुम्हारे ख्वाब ने मन में नई चाहत जगाई है, नहीं आसान है उसको दबाना या बुझाना, अब गलत फहमी की तुमने आग जो इतनी लगाई है, यही सब सोचकर पल पल सुकून के साथ हूं रहता, मुझे हासिल जमाने में तुम्हारी रहनुमाई है, मुझे हासिल जमाने में तुम्हारी रहनुमाई है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। कार्यक्रम जारी है वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13। आज का ये एपिसोड आधारित है लखनऊ से त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया है पर। मनीष जी इस गजल संग्रह में लिखते हैं, दोस्ती को जहां में निभाया बहुत, दुश्मनों ने मगर आजमाया बहुत, जब कभी जिंदगी कुछ लगी रूठने, हौसला रख उससे है मनाया बहुत, जब मिले राह में बेखबर रहनुमा, दर्द अपना उन्हें भी सुनाया बहुत, इश्क की रोशनी जब उजाला बनी, तीरगी को भी तेवर दिखाया बहुत, संग उसके कहां इल्म या होश था, दूर जब से गया याद आया बहुत, खो चुका हूं भले दौलतें मैं सभी, बंदगी से खुदा की है पाया बहुत, बंदगी से खुदा की है पाया बहुत।

त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी एक गजल में लिखते हैं, दोस्तों की दुआ काम आती रही, खुशनुमा जिंदगी को बनाती रही, था अंधेरा घना राह में पर सदा तीरगी रोशनी को बुलाती रही, नींद आई कभी जो मुझे राह में ख्वाब कितने सुहाने दिखाती रही, चांदनी रात का कुछ हुआ वो असर इश्क की आरजू जिल मिलाती रही, पाऊ में खार कितने चुभे हैं मगर जिंदगी बारहा मुस्कुराती रही, राह में बन गई जब सनम रहनुमा बंदगी आरजू में समाती रही, बंदगी आरजू में समाती रही।

0: वितस्ता रेडियो आपके जिंदगी की रवानी।
1: त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी ने अनेक पुस्तकें हमें भेजी, उसमें से एक है त्रिवेणी की कुंडलियां। इन कुंडलियों में से एक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और इसका शीर्षक है माता। माँ का वर्णन प्यार, त्याग, धैर्य और शक्ति का संगम है। वो हमारी पहली दोस्त, गुरु और सबसे सुरक्षित जगह होती है, जो निस्वार्थ भाव से परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, बच्चों के चरित्र और आत्मविश्वास का निर्माण करती है और हर मुश्किल में साथ देती है, जिससे किसी शब्द में बांधना मुश्किल है। त्रिवेणी की कुंडलियां, इसमें त्रिवेणी जी ने माँ के बारे में क्या वर्णन किया है, आइए वो मैं पढ़ता हूं। माता बच्चों के लिए प्रेरक प्राण अनूप, मानव मानक आदि गुरु, देवी लोक स्वरूप, देवी लोक स्वरूप जगत की वंदन माला, मातु शरण संचार परम सौभाग्य निराला। कहे त्रिवेणी प्राण गीत ये मन से गाता, परम इश्क का स्वरूप लोक जीवन में माता। माता सृजन काव्य में देवी दर्शन चित्र, कभी बाल मन प्रेरणा कभी सहायक मित्र, कभी सहायक मित्र जगत में राह सुझाए, मातु वचन अनमोल धरा को स्वर्ग बनाए। कहे त्रिवेणी प्राण भाव से लगन लगाता, जग संवर्धन मूल सदा सुध संयम माता। माता शब्दों से परे दिव्य लोक संसर्ग, मां महिमा से जग धरा बनती है सम स्वर्ग, बनती है सम स्वर्ग सृष्टि मां गरिमा धारे, मातु कृपा से धन्य जगत के चांद सितारे। कहे त्रिवेणी प्राण सत्य के दीप जलाता, वेद उपनिषद ज्ञान सहज जीवन में माता। माता क्या है लोक में बच्चों को कित ज्ञान, पर ज्ञानी विद्वान को होता माँ का भान, होता माँ का भान ध्यान कर उसकी महिमा, मातु शरण का मोल सदा जग जैविक गरिमा। कहे त्रिवेणी प्राण सहज शैली अपनाता, दिव्य गुणों की खान सभी बच्चों की माता। माता के आशीष से विकसित बचपन बाल, मातु शरण के अंक में बच्चे देवी माल, बच्चे देवी माल धार अभिनव अभिलाषा, मां ममता संचार बिना भव बंधन भाषा। कहे त्रिवेणी प्राण नवल उत्साह जगाता, भूमंडल संचार सभी जग रूपक माता। माता नारी रूप का सबसे उन्नत तार, मां ममता संचार का सहज लोक आधार, सहज लोक आधार सफल जग रूप सुधारे, मातु शरण में लोग पनपते पांव पसारे। कहे त्रिवेणी प्राण नवल सुख स्वप्न सजाता, प्राण वायु की धार लोग हित प्रेरक माता। माता सम्मुख नत सदा देव असुर का मान, राम भरत रावण सहित कंस कृष्ण संधान, कंस कृष्ण संधान खोजते मातु यशोदा, मां मंगल आवास नित शुभ प्रेम गरोंदा। कहे त्रिवेणी प्राण छंद नव भाव बनाता, दिव्य छंद आधार जगत में मानक माता, दिव्य छंद आधार जगत में मानक माता।

0: ये था आज का कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13, जो आधारित था लखनऊ से त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां, जिसमें हमने कुंडलियों में एक पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, अगर कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। त्रिवेणी प्रसाद दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने कविता संग्रह, गजल संग्रह और कुंडलियां हमें भेजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कार्यक्रम रेडियो वितस्ता टीम की ओर से एक छोटी सी भेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको और सभी श्रोताओं को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे मेल आईडी radiovitasta@gmail.com पर, या हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे किसी और कार्यक्रम में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 13। आज आपने त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष के गजल संग्रह दिल सूफियाना हो गया और त्रिवेणी की कुंडलियां पर आधारित कार्यक्रम सुना। सहयोग आरजे किरणी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है पूरा।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया है।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
3: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
2: रेडियो वितस्ता
4: असले पौन पटाके
3: सुन मेरे दिलदारा
2: मेनू 90.0 में।

सुनते रहो अपने पसंदीदा की। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। भिंडी की फसल पर बढ़ सकता है सफेद फफूंद का खतरा, संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें। गर्मी के बीच बार बार मौसम के बदलाव से भिंडी की फसल में सफेद फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का खतरा है। करनाल क्षेत्र में कुछ जगह बागवानी विभाग टीम को यह लक्षण भी मिले हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण करें और रोग के लक्षण दिखने पर नियंत्रण करें। प्रदेश में करीब 12,480 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की खेती की जाती है। पिछले वर्ष लगभग 1,34,143 टन उत्पादन दर्ज किया गया था। अंबाला, नूह, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और भिवानी भिंडी उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि सफेद फफूंद रोग की शुरुआत पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बों से होती है। धीरे धीरे यह पत्ती को ढक लेता है जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सल्फर का छिड़काव प्रभावी उपाय। किसानों को सलाह दी गई है कि रोग की रोकथाम के लिए किसान सल्फर 80% WDG का 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बचें। संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना भी लाभकारी रहता है। भिंडी का गर्मियों में उत्पादन बढ़ने पर मंडियों में सामान्यतः 15 से 30 रुपए प्रति किलो भाव रहता है, जबकि बरसात या ऑफ सीजन में यही भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। गुणवत्ता वाली कोमल भिंडी को अधिक कीमत मिलती है। 40 से 60 दिन में शुरू हो जाती है तुड़ाई। 40 से 60 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार बुवाई के बाद लगातार कई सप्ताह तक उत्पादन मिलता है। स्थानीय बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। गेहूं धान चक्र से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर वैकल्पिक फसल मानी जाती है। मूंगफली की बिजाई का सही समय। मूंगफली की बिजाई का सही समय जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी कर लें। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 बोने की सिफारिश की जाती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली की बेहतर पैदावार के लिए प्रति एकड़ बुवाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट ड्रिल करें। जिप्सम का प्रयोग भी लाभकारी है। दीमक और सफेद लट से बचाव के लिए बीज उपचार अवश्य करें। जरूरत से ज्यादा कीटनाशक व खाद डालने से मर जाते हैं मिट्टी के मित्र। फसलों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएगा उत्पादन। आधुनिक कृषि में जब भी फसल उत्पादन बढ़ाने की बात होती है तो अमूमन हमारा ध्यान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश युक्त एनपीके रसायनों पर जाता है। मिट्टी का अपना माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीव संसार हो रहा है। ऐसे में यदि ये पूरी तरह से नष्ट हो गया तो करोड़ों रुपए की खाद भी फसलों को जीवन नहीं दे पाएगी। उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर किरण करनाल के अनुसार रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी का जैविक ताना बाना पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया या कीटनाशक डालते हैं तो मिट्टी के मित्र बैक्टीरिया और कवक मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी ऊपरी तौर पर तो मौजूद रहती है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और फसलों पर कीटों का हमला बढ़ जाता है। किसान पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर सॉइल बायोलॉजी को समझे और जरूरी वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना जरूरी। क्रॉप रोटेशन का वैज्ञानिक आधार। मिट्टी में कार्बन का स्तर कम से कम 0.5 से 0.75 प्रतिशत होना जरूरी है। इसके लिए ढेंचा, मूंग जैसी हरी खाद, किंचवा खाद और फसल अवशेषों को खेत में ही गलाएं। कार्बन मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी का माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। दलहनी फसलों की जड़ें राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का रुख PSB और एजोट्रोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। पौधों को मिलेगा सुलभ भोजन। स्वस्थ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जटिल पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन में बदलते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन बेहतर होता है। बेलों के नीचे घास फूस या फसल अवशेष बिछाएं, होगा गर्मी से बचाव। 30% तक नुकसान घटाने में रहेगी मददगार। बढ़ती गर्मी बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए चुनौती बन रही है। मई जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने पर लौकी, तरबूज, खरबूज, खीरा, तोरई, करेला और कद्दू जैसी फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगती है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय में अंतराल पर सिंचाई इंटरवल इरिगेशन तकनीक फसलों को गर्मी से बचाने में कारगर साबित हो रही है। इस तकनीक में मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई की जाती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। इससे पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मल्चिंग भी उतनी ही लाभकारी है। बेलों के नीचे घास फूस या फसली अवशेष बिछाने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम खैरवा ने किसानों को सुबह या शाम सिंचाई करने की सलाह दी है। यह है इंटरवल इरिगेशन। इस तकनीक को रुक रुक कर सिंचाई करना भी कहा जाता है, जहां खेतों को लगातार पानी देने के बजाय निश्चित समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413101 नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन, और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन, और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
3: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर, ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: You are listening FM 90.0 MHz, Radio Vitasta, Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम बोजान रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं। रेडियो वितस्ता पन्न माज जब पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेत हमेशा बहुत तुंद रेडियो दोस्त भरत सपोरी। आज चुस बुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मज नव डल हेत आमुत। आज बोजनो तुम अशुर अफसान जन लिखमुत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

पर

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता

तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में, बाहर से आया है, सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे, तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर। हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कौन भी बोला है जी?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम। मन्नू।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।
0: देखो

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

धड़क धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो

ने खेचा आ हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

0: दर्ज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विथस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 12। कार्यक्रम का शीर्षक है ममता। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और लेकर आई हूं रेट्रो हिट्स का एक नया अंक जिसका टॉपिक है ममता। उसकी ममता का कोई मोल नहीं, उसके प्यार से बड़ा कुछ और नहीं, दुनिया की दौलत भी फीकी लगे, माँ का आंचल अगर छोड़ नहीं।

एक मूरत जो मंदिर से प्यारी लगे, एक रोशनी जो ताजगी सारी लगे, वो कोई और नहीं बस माँ ही तो है, जिसकी ममता हमें सबसे न्यारी लगे।

ममता के आंचल में सारा जहां है, इसकी दुआओं में रब का कर्म है। जो बिछड़ जाए माँ से किसी मोड़ पर, उसकी दुनिया में बस एक मातम है।

माँ की दुआओं में ऐसा असर होता है, हर दर्द भी गुलाब का सफर होता है। अगर साथ हो माँ के हाथों की छांव, तो कांटों में भी जीना हंसी होता है।

जब भी गिरते हैं दुनिया की ठोकरों से, माँ का आंचल हमें सहारा देता है। उसके बिना अधूरी है हर खुशी, उसका प्यार ही सबसे प्यारा होता है।

बचपन में जो सुलाती थी लोरी सुनाकर, आज भी दिल उसे याद करता है पुकार कर। हर दर्द मिट जाता है उसकी ममता से, माँ का आंचल सुकून देता है सहार कर।

जब भी मुश्किलों का अंधेरा गहरा होता है, माँ की परछाई में रोशनी का पहरा होता है। जो गिरते हैं बार बार दुनिया की राहों में, माँ का हाथ उन्हें फिर से संभाल लेता है।

जिंदगी के हर मोड़ पर जो राह दिखाए, अपने बच्चों को जीना सिखाए, जो दर्द खुद सहकर भी मुस्कुराए, वो माँ ही है जो हर गम भुलाए।

जब देर से घर लौटूं तो बेचैन होती है, मेरे भूखे रहने पर खुद भी भूखी सोती है। दुनिया में सबसे प्यारी कोई चीज है अगर, तो वो माँ की ममता की मूरत होती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है जो रोशनी की तरह हर अंधेरे में रास्ता दिखाता है। माँ एक दुआ है जो बिना कहे पूरी होती है। माँ एक चादर है जो हर दुख से बचा लेती है। आज चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर माँ की ममता का हाथ सिर्फ एक बार सर पर रख दो तो सारी थकान, सारा दुख, सारा इंतजार मिट जाता है।

ये था रेट्रो हिट्स माँ की ममता के नाम। माँ जहाँ भी हो बस एक बार उन्हें याद करके मुस्कुराई, क्योंकि उनकी दुआ आज भी आपके साथ है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 12। कार्यक्रम का शीर्षक था ममता। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।
1: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

1950 के दौर में उनकी आवाज को दर्ज किए बगैर वो अधूरा रहेगा। शमशाद अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती थी और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। शमशाद की बेटी उषा के मुताबिक अपने जमाने की सबसे बेहतरीन गायिका होते हुए भी उन्होंने खुद को ग्लैमर की दुनिया से दूर रखा। उषा की मां यानी शमशाद कहती थी कि उन्हें उनके गीतों के लिए दुनिया हमेशा याद करेगी। इसमें कोई शक नहीं, कहीं पे निगाहें मेरे पिया के रंगून, कभी आर कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला जैसे गाने हर जमाने में गाए गुन

शमशाद ने गीतों से लेकर गजलों और कव्वाली तक गायकी की कोई ऐसी विधा नहीं थी जिसमें उन्होंने फिल्मों में नहीं गाया। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पारंपरिक परिवार में हुआ था। शमशाद केएल सहगल की जबरदस्त फैन थी। शमशाद पांचवी कक्षा तक स्कूल में होने वाली प्रार्थनाओं के लिए प्रमुख गायिका थी। 10 साल की उम्र में ही शमशाद शादी के समारोहों और बाकी समारोहों में पारंपरिक और लोक गीत गाने

इसी दौर की बात है, जीनो फोन रिकॉर्ड कंपनी नई आवाजों की तलाश में थी। शमशाद अच्छा गा सकती थी, लेकिन उनके रूढ़िवादी परिवार को संगीत से कोई लगाव नहीं था और ना ही वे लोग शमशाद के गायिका बनने के लिए राजी थे। सौभाग्य से शमशाद का हौसला बढ़ाने वाले चाचा उनके पिता की इच्छा के खिलाफ उन्हें रिकॉर्ड कंपनी के पास लेकर गए। उनका ऑडिशन मास्टर गुलाम हैदर ने लिया। मजबूरन पिता को अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा और शमशाद को गाने की इजाजत दे दी।

शमशाद बुरके में स्टूडियो जाती थी, पार्टी या बाकी समारोह में शरीक नहीं होती थी और तस्वीरें भी नहीं खिंचवाती थी। सन 1934 में उन्होंने गणपत लाल से शादी की। शमशाद के पति फोटोग्राफी के शौकीन थे। 70 के दशक तक भी शमशाद ने तस्वीरें नहीं खिंचवाई। बात चाहे जीनाफोन कंपनी की हो या फिल्मों की, अपने पंजाबी और हिंदी गानों से शमशाद ने लोगों के दिलों में एक अलग ही मुकाम बना लिया था। उन्होंने गुलाम हैदर के निर्देशन में 200 गाने गाए जो सिर्फ रेडियो पर नशर हुए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर ये गाने रिलीज नहीं किए गए। 30 के दशक के आखिर में उनके दो जाती गाने तेरे पूजन को भगवान और ओम जय जगदीश काफी ज्यादा चर्चित हुए।

फिल्मों में गायन के आगाज से पहले शमशाद ने दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में भी गाने गाए। तब भी इनके संगीत निर्देशक गुलाम हैदर।

सन 2009 में शमशाद को पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। शमशाद की जादुई आवाज एक बार ही जन्म लेती है, बार बार नहीं। हिंदी सिनेमा की सबसे मीठी और सुरीली आवाज, सबसे मशहूर आवाजों में से एक आवाज अब खामोश हो गई है। शमशाद खुदा का खौफ रखने वाली और नेक ख्याल की थी, सबकी मदद करने वाली और सबसे मिलजुल कर रहने वाली।

40 के दशक में हर फिल्मकार की यही चाहत होती कि शमशाद उनकी फिल्म की गायिका बने। सुरों की मलिका की आवाज से महबूब खान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्हें मुंबई आने को राजी कर लिया। उनके लिए शमशाद ने तकदीर फिल्म के गाने गाए। बतौर नायिका नरगिस की ये

कई दशकों तक हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक मकबूल गीतों को आवाज देने वाली शमशाद बेगम कमाल की कलाकार थी। उनका तलफ्फुज सुरों पर पकड़ और उनकी लोचदार आवाज उन्हें दूसरों से अलग करती थी। नौशाद और ओपी नैयर के साथ उन्होंने

पर भले ही शमशाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन गायकी के लिहाज से और उनकी शख्सियत के हिसाब से वो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहेंगी।

हे रहबर बता दे किधर की तलाश है तुझे, हे रहबर बता दे किधर की तलाश है तुझे, मुझे लूटने के बाद किसको लूटना है।

0: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
1: भारतीय फिल्म इतिहास में कुछ दशक ऐसे हुए हैं जिन्हें किन्हीं खास कलाकारों की वजह से याद किया जाता है। अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो यह दशक राजेंद्र कुमार के कारण याद किया जाता है, जिन्हें इस दौर में अपनी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जुबली कुमार का नाम दिया गया था। उस दौर की हर अभिनेत्री की इच्छा रहती थी कि उसे राजेंद्र कुमार के अपोजिट किरदार निभाने का मौका मिले।
2: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में एचएस रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। एचएस रवेल ने ही आगे चलकर राजेंद्र को लेकर फिल्म मेरे महबूब का निर्माण किया, जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी।

फिल्म निर्माण के गुर सीखने के दौरान ही राजेंद्र कुमार के मन में अभिनय यानी एक्टिंग की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद एक एक्टर के तौर पर पहली बार उन्हें दिलीप कुमार के साथ फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला था। यही से वो लगातार कामयाबी हासिल करते गए और 1956 में उन्हें फिल्म आवाज में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में एक अच्छे बेटे का किरदार निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा उन्हें। यह सिलसिला जारी रहा। 1959 में गूंज उठी शहनाई ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दिलाया।

अगले ही साल उन्होंने कानून और धूल का फूल जैसी फिल्में दी, जो लगभग गूंज उठी शहनाई के समय में ही रिलीज हुई थी। वो हमेशा अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक रहते थे, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक अलग तरह की इमेज में बांधकर रख दिया। 60 के दशक में उन्होंने आस्क पंछी, ससुराल, हमराही, दिलीप मंदिर, आई मिलन की बेला, जिंदगी, संगम, आरजू, सूरज जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में

उनकी सफलता के चढ़ाव के इस दौर के बाद एकदम इसमें उतार आया और उनकी अमन झुक गया आसमान, पालकी, साथी और शतरंज जैसी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने गवार, गांव, हमारा शहर तुम्हारा और तांगे वाला जैसी औसत दर्जे की फिल्में की, मगर उन्हें पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली।

70 के दशक में जब राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई थी, तब राजेंद्र कुमार अभिनीत और राजकुमार कोहली की फिल्म गोरा और काला आई और सुपरहिट साबित।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। FM 90.0 MHz पर आज के प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। आने वाले दिनों में हम कुछ नए कार्यक्रम भी आपके लिए तैयार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:03:19। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते होंगे। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 21 जून 2026 रविवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी और शुरुआत करेंगे हम वंदे मातरम से और लाएंगे प्रकाश प्रवाह। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और कल रविवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर होगा कार्यक्रम आओ गांव चलें और कल हम आपको लेके चलेंगे पिंड तेजा मोड़ी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। 8 बजे आप सुनेंगे तुम्हें याद हो कि ना याद हो और कल आप सुनेंगे कार्यक्रम ओपी नायर पर, पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की कड़ी है ओपी नायर। 8:30 बजे किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 4। कल होगा डिजिटल डिटॉक्स पर बातचीत और 9:30 बजे सरगम एपिसोड 10 और 10:20 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम होगा। और कल हम आप मिलाएंगे आपको राजेंद्र रहबर से। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम गजल, 7 बजे सरगम एपिसोड 3 होगा और 8:30 बजे सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है काश फुर्सत होती। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हम आपसे लेते हैं इजाजत। कल सुबह 5:58 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रखिए, अपने परिवार को और अपने बच्चों का ध्यान रखें और मिलते हैं कल। और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। कल तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।